राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी दिल्ली का चैनल है 102.5।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए

0: आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
1: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में JPSC JSSC परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में ये अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के

0: अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोक सत्य की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार है। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की

0: बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
2: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाए हैं। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात की गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
4: In Tiranga Yatras, bike and cycle rallies, cultural programs and concerts. Each activity has a different form, but the sentiment behind them is common. The national flag is a symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
5: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
6: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीति जैन।
1: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय उड़ीसा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के दो मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं।

समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेल सिंदारोप को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
0: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
0: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
2: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
0: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
2: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
0: जी।
2: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
0: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
2: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके

0: वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
1: जी
0: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
1: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
1: जी, और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे?
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
1: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के छात्र थे तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है, मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
4: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
4: तो फिर?
3: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
4: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
3: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
4: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे
5: हैं। यू इडियट्स, क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
3: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
5: Is that right? You black monkey?
4: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
5: वाह जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
3: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
5: You bloody rascal, you are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
3: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
5: तो क्या करेगा? हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? यू स्काउंडरल, यू ब्लडी स्वाइन, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
3: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
5: ठीक है, हम तुमको देख लेगा, क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर।

0: पर्यटन, आइंदा याद रखिएगा।
1: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिले। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
2: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
3: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
2: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
3: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
2: और अपने सुभाष बाबू?
3: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया, और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
4: कितनी सजा हुई?
0: नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
2: क्या हुआ सुभाष बाबू?
0: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
1: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
0: कौन? शिशिर?
5: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।
0: आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है?

0: गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
1: ठीक है, चलो। लेकिन मेरे ये कपड़े?
0: उसका भी प्रबंध हो गया है। आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
1: ठीक है।
0: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
1: तो फिर ठीक है, आओ चले।
0: चलिए।
2: सोलह जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
3: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
4: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ मौलवी साहब।
3: आदाब। ये सामान यहाँ रख दीजिए।
4: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
5: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
5: खुदा हाफिज साहब। लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो। ये अखबार कहां गए? हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
6: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
2: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
7: जय

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्यौछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
5: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
6: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी।

0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
3: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
4: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
5: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को जयपुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारीशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill to enhance funding and development of cooperative sector, also gives nod to legislation to rename state of Kerala as Keralam. Both houses refer Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Home Minister Amit Shah says he is ready for detailed discussion on NEET paper leak related issue, writes letter to Lok Sabha Speaker. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for greater private capital mobilization in BRICS economies for global growth. Heavy to extremely heavy rainfall likely over parts of Odisha and Gangetic West Bengal for next 2 days as low pressure forms over Bay of Bengal. And Indian fencing team clinches 5 medals, including 3 gold on third day of Commonwealth Championship in Nigeria. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The corporation can also provide loans and grants directly to any cooperative society or entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha had passed the legislation yesterday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Replying to a debate on the bill, Minister of State for Home Nityananda Rai said the Kerala Legislative Assembly had passed a resolution in 2024 requesting the centre to change the name of the state from Kerala to Keralam. He said the request in this regard was made because the name of the state in Malayalam is Keralam, while in the constitution it is written as Kerala. We have a report.
7: Both the houses of parliament once again witnessed disruption following opposition uproar on various issues. Due to the ruckus, the question hour in both the houses could not be taken up today. Lok Sabha could not take up the 0 hour as well, while the Rajya Sabha took it up for a brief period. Despite government's assurance that it is ready for a detailed discussion and reply on the issues raised, the opposition parties including Congress continued with their sloganeering. Post lunch, the Rajya Sabha cleared the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Kerala Alteration of Name Bill 2026. Both Lok Sabha and the Rajya Sabha today gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
6: The Lok Sabha has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026. When the House met at 3 p.m. after the second adjournment, Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment

0: Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar. Market Mantra ke taza ank ko lekar hum hazir hain. Hamesha ki tarah arthniti, karobar aur share bazaar se sambandhit taza khabron ke saath hum in par charcha bhi karenge aur charcha ke liye humne aamantrit kiya hai desh ke jane mane varishth aarthik patrakar Siddharth Singh ji ko. Siddharth ji namaskar, karyakram mein aapka swagat hai.
2: Namaskar Manoj ji.
1: Aaiye shuruaat karte hain angrezi mein headline se jise lekar maujood hain Nishit Kumar.
0: The benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,450. India's retail inflation rises to 4.45% in July this year. And global oil supply and demand expected to fall this year amid geopolitical headwinds, says International Energy Agency, adds both to rebound next year.
1: घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली से घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स लगभग 200 अंक नीचे आया. निफ्टी 24,450 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद. देश में खुदरा मुद्रा स्फीति की दर इस वर्ष जुलाई में बढ़कर 4.45% पर पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा भू राजनीतिक तनावों के कारण इस वर्ष तेल की आपूर्ति और मांग में गिरावट होने के हैं आसार. ये भी कहा अगले साल बढ़ सकती है मांग.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही. प्रमुख सूचकांक मामूली घाटे के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 188 अंक यानी 0.24% नीचे आकर 77,966 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंक यानी 0.15% नुकसान के साथ 24,436 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां मिला जुला रुख था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% लाभ में रहा जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.2% की गिरावट आई.
0: The benchmark domestic equity indices ended with modest losses today. The Sensex dipped 188 points or 0.24% to close at 77,966. The Nifty dropped 36 points or 0.15% to settle at 24,436. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.3%, while the small-cap 100 index fell 0.2%. The markets opened on a weak note amid elevated crude oil prices and geopolitical uncertainties. The Sensex and the Nifty remained under pressure and witnessed broad-based selling. However, both indices pared their intraday losses during the last half an hour of trade.
1: आइए नजर डालते हैं सेंसेक्स पैक पर. सेंसेक्स पैक में आज 30 में से 21 कंपनियां घाटे के साथ बंद हुए. सबसे अधिक घाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हुआ जिसके शेयर 3.7% नीचे आकर बंद हुए. महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1.7% का और टाटा स्टील को 1.6% का नुकसान उठाना पड़ा. उधर मांग निकलने से भारतीय स्टेट बैंक के शेयर 1.3% लाभ में रहे. भारतीय एयरटेल को 1.1% से अधिक का मुनाफा हुआ और अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम लगभग 0.5% से थोड़े से ऊपर आकर बंद हुए.
0: एंड इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 14 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन. अमंग द टॉप लूजर्स हॉस्पिटल्स डिप 2.8%, आईटी लॉस्ट 1.4% एंड फोकस्ड आईटी फेल 1.5%. इन कॉन्ट्रास्ट टेलीकम्युनिकेशंस क्लाइम्ड 1.9%, पीएसयू बैंक्स रोज 1.8% एंड मिड स्मॉल प्राइवेट बैंक्स quality tilt added over 0.8%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,462 companies declined, 1,867 advanced and 196 remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 10 पैसे मजबूत हुआ. 95 रुपए 33 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. सिद्धार्थ जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। एक और प्रमुख सूचकांक थोड़े से घाटे में दिखे हैं, जबकि विस्तारित बाजार में मिला जुला रुख रहा है। एनएसई का मिड कैप 100 इंडेक्स थोड़ा सा लाभ के साथ बंद हुआ, क्या रुख दर्शा रहा बाजार?
0: नहीं देखिए मनोज जी, कहीं ना कहीं अभी भी बाजार जो बड़ी जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है, जो अमेरिका और ईरान की जो युद्ध के बाद जो अनिश्चितता बनी हुई, वो अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। साथ साथ उसी की वजह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल या जो कच्चे तेल के दाम हैं, उनमें दोबारा से हमने तेज़ी देखी है। तकरीबन $90 के आसपास दोबारा क्रूड ऑयल के दाम पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं बाज़ार में जो इमीडिएट रीज़न, एक प्रेशर उसका दिखा। साथ ही हमारी बाज़ार में आज एक और बड़ा कारण था, वो आप जो कह सकते हैं एक बड़ी जो उद्योग जो समूह है, कॉरपोरेट ग्रुप है, उसके जो चेयरमैन थे, उन्होंने जो है अपना अनाउंस किया कि वो अब उससे इस्तीफा दे रहे हैं उस पोजीशन से। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी उस खासकर उस कॉरपोरेट ग्रुप के जो शेयर्स थे, क्योंकि वो तकरीबन हर सेक्टर आप देखेंगे तो हर सेक्टर में उस ग्रुप का जो है कहीं ना कहीं विजिबिलिटी है उसको, तो उसमें भी हमने गिरावट देखी। तो मुझे लगता है प्रमुख जियोपॉलिटिकल क्रूड ऑयल के दाम और जो तेज़ी और इसकी वजह से, और जो एक और अनिश्चितता आ रही है जो अमेरिका में जो है महंगाई और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, वहाँ का फेड क्या करेगा, क्योंकि जब से नए फेड चेयरमैन आए हैं केविन वॉश, उन्होंने एक बात तय कर दी है कि वो कोई भी गाइडेंस नहीं देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता लेके आ रहा है।
2: So that if we may talk about, you know, the first quarter results, which were pretty kind of encouraging, if you may say so, and that sustained the market to quite an extent. But do you see that steam kind of losing out, and the West Asian crisis, as you mentioned, kind of having an overarching effect on the Indian markets?
0: Yes. Good evening, Nishit. To start with, and to answer to your question, obviously yes, because as it was not widely expected that our Q1 results, because the if you look at the US-Iran conflict, it started towards the end of February.
2: Yes.
0: So it was expected, and obviously we being major importers of energy, almost 90% of our energy is imported, it was expected that it would have a huge impact on the Indian economy. But yes, the way the government of the day handled the supply side situation, the way not only the distribution, also the management of supplies, fertilizer, so everything was done, I would say, in a very responsible and also in a very timely manner. So I think, so we had very good Q1 results, but yes, the geopolitical uncertainty is now become a certainty. So that is having a very huge impact on our markets, and also the way we are seeing the crude oil, obviously, because we have huge importers, so obviously it is reflected on the Indian markets. And despite having good Q1 results, and also if you look at our macroeconomic fundamentals also, if you look, even inflation has now inched up over 4%, which is a little over 4%. So even then, inflation, also even the GDP numbers, and also the estimate, the forecast is still within whatever we had RBI had projected. In fact, it's improved its estimate in the last monetary policy. So I don't see any macroeconomic fundamental going wrong, but yes, the geopolitical uncertainty of the US President Mr. Trump is looming large on our Indian stock markets.
2: Right. So uncertainty is the new certainty, nicely put, Siddharth. If we talk of you mentioned about the chairperson of a large conglomerate kind of putting in his papers, of obviously his tenure kind of ends in February 2027. But do you see these kind of events, these are kind of black swan events, if I may say so, in the corporate world, do you really see that these kind of events kind of having that kind of impact which you saw today, especially in that the companies of that group?
0: See, I don't see anything if one person going out from such a huge conglomerate. Yes, definitely he was he played a very important role for long years in that group.
2: So almost close to 4 decades.
0: Yeah, yes. 4 decades. He's risen from the ranks.
2: Correct.
0: So obviously he had a very strong influence in the growth of that group. So obviously his going obviously creates little bit of uncertainty. But if you look at the group, we are not
3: not mentioning here.
2: We can, the name of the group, but we
3: can say also, because there's nothing
2: nothing wrong with that.
3: So the Tatas, but if you look, that is, the Tatas are not known for any individual. They're known for very broad-based leadership, also they've kind of they're known for corporate governance. I would say they are known for setting standards for corporate governance. So I don't see that investors should be jittery, but yes, markets do react to these kind of news, and it's a very short-term reaction.
2: And
3: probably
2: in fact, Siddharth, if I may put in a fact here, you know, just a decade back, if you remember, you know, when the erstwhile chairperson of the Tata Group, he was kind of jettisoned out of the, you know, of the group, and this Mr. Chandrasekharan, when he was brought in, handpicked rather by Ratan Tata, and he has in fact delivered, you know, over the past decade or so, taking, you know, the company from, you know, from strength to strength, kind of. So yes, obviously, it would have some kind of a splinter effect on the market, and probably, you know, in the coming weeks or maybe even days, even, you know.
3: I don't see it lingering for a long time. Obviously, we will see some kind of announcement from the Tata Group also coming in, and I don't see anything, any kind of negative impact on the company or the group companies.
2: Absolutely.
1: सिद्धार्थ जी, यानी अभी जो हमने चर्चा की उसमें आपने विशेष रूप से कहा और निश्चित ने भी उसे दोहराया कि अनिश्चितता निश्चित एक कह लें कि स्थिति बन गई है वर्तमान माहौल में. ऐसे में जो हमारे श्रोता हैं, हमारे निवेशक हैं, उनको अपना निवेश किस रूप में रखना चाहिए कि अनिश्चितताओं के दौर में जब बाजार में गिरावट यानी सूचकांक काफ़ी ऊंचे स्तर से लगातार नीचे स्तर पर और अब तो एक रेंज बाउंड यदि जिसे हम कहते हैं उसमें आगे पीछे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, वहाँ उनको अपना निवेश किस रूप में रखना चाहिए ताकि साल के अंत में या दो साल में उन्हें अपने निवेश पर नुकसान ना उठाना पड़े.
3: नहीं मनोज जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा. अगर मैं इसका जो आंसर जवाब शुरू करूं, जब ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जो टैरिफ्स लगाए दुनिया के करीब करीब कई सारे देशों पे, जिसमें भारत भी जिसका पार्ट था, तो उस समय आपने देखा होगा हमारे बाज़ारों में एकदम से जो है काफ़ी गिरावट आई. कुछ दिनों तक वो सिलसिला चला, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि FIIs ने तो लगातार निकासी की, लेकिन जो हिंदुस्तान का रिटेल इन्वेस्टर था और साथ साथ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनका विश्वास हमारी बाज़ार पर लगातार कायम रहा. तो मैं आपके सवाल का जवाब यही दूंगा, एक निवेशक को जैसे कि जैसा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी बाज़ार में पिछले लगातार दो साल की अनिश्चितता में जो जो अपने विश्वास को कायम रखा है, मुझे लगता है उसमें कोई भी कारण नहीं है कि उस विश्वास में किसी तरह की कमी आए या उनके निवेश में कमी आनी चाहिए. मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, और हिंदुस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो ग्रोथ का पैरामीटर देख लें, आप महंगाई दर देख लें, साथ साथ आप सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे रिफॉर्म्स हों, चाहे मेक इन इंडिया को लेकर जो PLI स्कीम्स हैं, जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, हमने अभी सेमीकंडक्टर मिशन को भी की भी घोषणा की है, और उसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे जो कॉरपोरेट टैक्स हो या GST का कलेक्शन हो, तो या UPI का जो पेमेंट्स का जो डेटा आ रहा है उस सब में कहीं ना कहीं, या जो गाड़ियों की जो बिक्री हो रही है उसका डेटा, तो उसमें जो है मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता का विषय बिल्कुल नहीं लगता. हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये ऐसा पीरियड है, और ख़ासकर हमारे लिए, क्योंकि हम जो है हम अपनी 90% जो ऊर्जा की जो मांग है, जो पूर्ति है, वो विदेश से करते हैं, बाहर से लाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा ये हमारे ऊपर बिल्कुल, जहाँ थोड़ा महंगाई पे भी प्रेशर दिखाई दे रहा है, साथ साथ थोड़ा इकोनॉमी पे भी एक प्रेशर दिखेगा कुछ दिन के लिए.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशिया पर ध्यान दें तो एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 3.7% की वृद्धि आज हुई है. जापान का निक्की 225 सूचकांक 0.8% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ. आइए लौटते हैं स्वदेश, यानी एक अच्छे आंकड़े आए हैं CPI के, यानी उपभोक्ता मूल्य से संबंधित आंकड़े आए हैं, और हम उन पर श्रोताओं को लिए चलना चाहेंगे. खुदरा मुद्रा स्फीति की दर में थोड़ी सी बदलाव आई है. खुदरा मुद्रा स्फीति दर जुलाई महीने में वार्षिक आधार पर इस वर्ष 4.45% पर बढ़ गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य 4% से थोड़ा सा ऊपर इस बार भी है। गौरतलब है कि लगातार 2 महीने से हम इसमें इस दर को 4% से ऊपर देख रहे हैं। जुलाई में मुद्रा स्फीति की दर 4.38% पिछले जून में थी,

0: जबकि इस बार थोड़ी सी बढ़त है, मामूली बढ़त। 2024 आधार वर्ष को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए नया बनाया गया था, उसके बाद 4% से ऊपर लगातार दूसरी बार है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर यानी खुदरा मुद्रास्फीति की दर 4.84% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.96% रही थी। खाद्य मुद्रास्फीति जो कि अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है, वह जुलाई महीने में 5.52% रही, जबकि जून में ये 5.32% थी। यानी खाद्य मुद्रास्फीति में अच्छी खासी बढ़त, यानी थोड़ी सी बढ़त हम देख रहे हैं। जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जुलाई में जो मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ी उसमें मुख्य कारण व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, रेस्टोरेंट, उसके अलावा एकोमोडेशन सर्विसेज, खाद्य और पेय पदार्थ, विशेष रूप से जो मादक पेय पदार्थ होते हैं उनके दाम भी बढ़े हैं। अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो चांदी, सोना, हीरा, प्लैटिनम के आभूषणों के दाम अच्छे खासे बढ़े। अदरक भी महंगा हो गया और लहसुन भी महंगा और प्याज भी महंगे हुए हैं इस दौरान, जबकि जिनके दाम कम बढ़े उसमें आलू, भिंडी, टमाटर और मटर शामिल है। और साथ ही वाहन भी यानी चौपाया वाहन यानी गाड़ियों के दाम भी नहीं बढ़े। कुल मिलाकर इन आंकड़ों पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सिद्धार्थ जी?
1: नहीं देखिए मनु जी, जो अभी पिछले हफ्ते जब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जब अनाउंस की थी तो उन्होंने इस बात के साफ संकेत दिए थे कि वो अभी भी इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड कर रहे हैं। आरबीआई को इस बात का अनुमान था कि जो ये मुद्रास्फीति या सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, इसमें थोड़ा सा इजाफा आएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो सरकार ने हमारे जो केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक को जो टारगेट दिया है वो 4% का टारगेट, महंगाई का टारगेट दिया है, और उसको वो बैंड और वो 2% ऊपर और 2% नीचे उस बैंड में उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि उनको ये भी इंश्योर करना है कि महंगाई दर के साथ साथ जो हमारी ग्रोथ है उसको भी वो बनाए रखें। और उन्होंने इस बात का साफ संकेत दिया था क्योंकि चूंकि जब से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था, और फूड इन्फ्लेशन जो कि तकरीबन 37%, अगर आप इंडेक्स का जो सीपीआई का जो इंडेक्स है उसका अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 37% जो है वो फूड जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो उसकी वजह से और जो पेट्रोल और डीजल के दाम पीछे बढ़ाए गए थे तो उसका असर हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो सेंट्रल बैंक ने भी इसीलिए इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए क्योंकि उनको हाँ चिंता ज़रूर है क्योंकि मानसून ख़राब है तो, और खास और साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइजेस का जो दबाव है वो बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उनका ये मानना है कि पूरे साल के लिए ये दिसंबर में जाके कहीं 5% के आसपास पीक करेगा जो हमारा महंगाई दर है, और पूरे साल 5% का एवरेज इन्फ्लेशन शायद उससे ऊपर ना जाए। तो इसलिए इस समय पे, और ये इन्फ्लेशन क्यों है क्योंकि हम जो मैंने पहले बोला क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़े तो उसका जी, जी, जी। बाकी चीज़ों पर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, तो इसी वजह से। और सर उनको ये भी इंश्योर करना है कि ये जो है ऐसा ना हो कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट हो, तो इसलिए अभी भी वो न्यूट्रल स्टांस सेंट्रल बैंक ने बना
2: के रखा। इन फैक्ट इफ यू लुक एट द अपटिक इन द डेटा 4.4%, सो दैट इट हैज समथिंग आल्सो गॉट टू डू अ बिट विद द न्यू 2024 बेस ईयर सीरीज एज वेल, सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम यू नो दिस डेटा हैज कम व्हेन दिस 2024 बेस ईयर कंज्यूमर प्राइस सीरीज हैज कम इनटू इफेक्ट।
1: Nishit, right. Absolutely right, because this was just introduced in January and yeah. it captures a very wide range of items. It gives you a complete picture of the Indian economy, also the latest items. Absolutely. Lot of obsolete Absolutely. Items were discarded.
2: Rightly so, yes.
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कमोडिटी बाजार से जुड़े सभी पक्षों से घरेलू बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय मानक और गुड डिलीवरी मानक विकसित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्य रूप से वैश्विक मानकों पर निर्भरता कम की जानी चाहिए। मुंबई में आज आयोजित ग्लोबल कमोडिटी कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार की सफलता का आकलन इस आधार पर

0: किया जाना चाहिए कि वह वास्तविक अर्थव्यवस्था की को कीमतों का पता लगाने और जोखिमों के प्रबंधन में कितना प्रभावी मदद करता है। सेबी कमोडिटी सूचकांकों और भौतिक रूप से निपटाए जाने वाले गैर कृषि कमोडिटी अनुबंधों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई की व्यापक भागीदारी की संभावना पर विचार कर रहा है। एक्सचेंज पर कारोबार होने वाले कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एफपीआई की भागीदारी को लेकर सेबी ने कल एक परामर्श पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि कृषि जींसों के लिए पोजीशन लिमिट पर परामर्श प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त से सेंसेक्स और एनएसई में कीमतों के अंतर में काफी कमी आई है। इसके पीछे प्रमुख ब्रोकरेज कंपनियों द्वारा सांकेतिक सेटलमेंट कीमतें प्रदर्शित करने सहित कई उपायों का योगदान रहा है। यहाँ पर ध्यान यानी प्रतिक्रिया तो हम पूरी खबर आपका चाहेंगे, लेकिन विशेष रूप से जो कमोडिटी सेगमेंट में एफपीआई के आने की चर्चा चल रही है, वह किन उद्देश्यों के लिए और क्या क्या लाभ इसके दिख सकते हैं?
1: जो बात वो कह रहे हैं वो शायद नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं मनोज जी, और आज भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी वो केवल कैश सेगमेंट में निवेश करते हैं। अब जो नया डिस्कशन पेपर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो पब्लिक डोमेन में डाला है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, उसमें उन्होंने ये प्रपोज किया है कि फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव जो कि जैसे सोना चांदी हो या आपके प्रेशियस मेटल्स हो या आप क्रूड ऑयल वगैरह की जो होगी, उसका फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चर डेरिवेटिव सेगमेंट में भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जो है उनको अलाउ करने की बात है। और उसके पीछे बेसिक कारण एक ये है कि इससे एक तो बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी हमारी बाजार में, साथ साथ जो हमारे बाजारों का इंटरनेशनलाइजेशन भी होगा, क्योंकि विदेश की जितने भी बड़ी मार्केट्स हैं उनमें आप देखेंगे कि उनको जो है किसी भी विदेशी निवेशक को फिजिकल सेटलमेंट वाले नॉन एग्रीकल्चरल डेरिवेटिव्स में भी अलाउ किया जाता है।
2: Right, and moving on to some other stories, Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The corporation can also provide loans and grants directly to any cooperative society or entity engaged in cooperative development. Replying to discussion, Mr. Mohol said that through this bill, the welfare and economic empowerment of crores of farmers across the country will be strengthened. And in some other story, the global oil supply is expected to fall by 4.3 million barrels per day, that is BPD, to 102 million BPD this year, as renewed hostilities in the Middle East and maritime disruptions in July and early August undermine the recovery efforts. According to the International Energy Agency's oil market report, global oil supply rose by 2.4 million barrels per day in July, but remained 6.3 million BPD below the pre-war levels. It added that the supply is expected to rebound by 8.3 million barrels per day next year. The IEA expects global oil demand to contract by 1.6 million barrels per day this year, as the ongoing closure of the Strait of Hormuz and elevated fuel prices continue to weigh on oil consumption. It said that the demand is projected to expand by 2.4 million BPD, that is barrels per day, in 2027. Siddharth, we'd like to have your comment on this, because the West Asian crisis doesn't seem to get over anytime soon. It's on one day off the other day. So now with this oil supply expected to fall by 4.3 million barrels, there is quite some data to 1.2 million barrels per day. How do you see this?
1: Nishit, obviously this would impact the growth, the world growth also, and the obviously the two big reasons are obviously the disruption of the supply, the way the routes are impacted, especially the Strait of Hormuz, and there's still no clarity how far and how soon it will end. Plus the other reason is also the price of crude oil going up, obviously that also brings down the demand. So that also is also leading to the fall in demand not only the supply, the demand is coming down because of the supply, but also because of the prices going up.
2: Right.
0: यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहेंगे इस चीज को कि तेल की मांग घटना इस वर्ष क्या कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के थोड़े घटने के आसार व्यक्त कर रहा क्या?
1: नहीं मनोज जी, देखिए अगर एक बात हम लोग निश्चित तौर पे समझ लें कि क्रूड ऑयल एक बहुत बेसिक वो है,
0: कमोडिटी
1: है, जो चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, मतलब एक बेसिक जिसको ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हो, किसी भी सामान, केमिकल सेक्टर, तो जब उसका उसकी कीमत बढ़ेगी तो उन उस सेक्टर जहाँ चाहे ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक्स हो, या किसी तरह के जो जो सामान जो मैन्युफैक्चर होंगे तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, तो या तो कंपनी एब्जॉर्ब करे या पास ऑन करेंगी, तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी और यहाँ पे कीमतें भी बढ़ रही हैं, साथ साथ उसकी सप्लाई भी घट रही है या अनसर्टेन है, डिसरप्शन हो रहा है। हमने भी जैसे कि बहुत तेजी से हम लोग तकरीबन 19 देशों से इंपोर्ट करते थे जब वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू नहीं हुई थी, अब आज हम करीब करीब 40 देशों के से ज़्यादा हम अपनी क्रूड ऑयल की जो सप्लाईज हैं, प्लस अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया है, उसको थोड़ा उसमें बदलाव किया है, तो उससे हम अपने को मैनेज कर रहे हैं।
2: Yeah, and the global crude oil prices were displaying mixed trend today. The Brent crude was trading 0.2% down at $88.71 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading marginally up at $82.24 per barrel when reports last came in. Quick comment, Siddharth, where do you see the crude going from here?
1: Nishit, I think it's very difficult to say. This is a question, one question I think which nobody would be able to answer. But yes, as long because we saw it falling in 15 days back, it had almost come below $80. Yes. But again, it has shot up because of the uncertainty.
2: More than that, Siddharth. If I'm not wrong, it came down to around 70 even.
1: Yeah, 70. That's why I said below 80.
2: Yes.
1: And now
2: yes.
1: Again, inching up to $90.
2: Yes,
1: so I think it. It all depends on how, what shape the peace talks take and what is the kind of peace which is reached. Because all the, each time they enter into an agreement, it breaks the next day.
2: Correct.
0: आइए आपको लिए चलें सर्राफा बाजार, वहां से भी समाचार चमक तेज होने के हैं, यानी तेल के साथ सोने चांदी की चमक भी तेज हो रही है। भारतीय सर्राफा बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.4% की बढ़त के साथ 1,53,419 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 0.8% बढ़कर 2,37,214 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप दोनों का भी धन्यवाद।
2: थैंक यू सो वेरी मच सिद्धार्थ। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,450. India's retail inflation rises to 4.45% in July this year. And global oil supply and demand expected to fall this year amid geopolitical headwinds, says International Energy Agency, adds both to rebound next year. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है गीत मेरे मन में।

इस गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंजू आ गई हैं स्टूडियो में आगे का कार्यक्रम लेकर, तो आप जुड़े रहिएगा एफएम गोल्ड चैनल से और अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के लिए। फिलहाल आइए इस चैनल पर अब सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा इसे पहले मंजूरी दे चुकी है, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में

0: केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने विधेयक संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर चार लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज फुट ओवर ब्रिज जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशोनिधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही प्यारा सफर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुम हो तो रंग है हवाओं में, तुम हो तो रंग है हवाओं में, तुम हो तो खुशबू है फिजाओं में, तुम्हारे होने से ही आबाद है ये जहां, वरना वरना क्या रखा है इन खाली हवाओं में।

मेरी सांसों में शामिल हो, तुम मेरी सांसों में शामिल हो, सांसों में मेरा तुम्हारा ही नाम है, तुम हो तो इस दिल को सहारा भी तुम्हारा ही है।

इस दिल का क्या करें जो कहीं लगता नहीं, तेरे सिवा इसे और कोई जचता भी नहीं। यूं तो महफिलें सजी हैं चारों तरफ, पर तेरे बिना यहां मुझे कुछ दिखता नहीं।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तेरे संग ही देखे हैं मैंने सारे सपने, अब तो इस दिल में बस तुम ही लगते हो अपने। तू साथ हो तो हर मुश्किल बहुत आसान लगती है, वरना वरना तो ये तन्हाइयां भी हर पल आती हैं हमें डसने।

क्यों खफा होते हो हमसे इस कदर तुम, क्यों खफा होते हो हमसे इस कदर तुम, तुम्हारी बेरुखी से थम जाता है मेरा सफर। माना कि गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, पर तुम्हारे बिना अधूरा है मेरा दिल और मेरा घर।

करीब आओ कि तुम्हारे बिना ये दिल लगता नहीं, करीब आओ कि ये दिल तुम्हारे बिना ये दिल लगता नहीं, कि कोई और चेहरा अब इन आँखों में जचता नहीं।

दोस्तों, ये सफ़र तो अभी यूँ ही चलता रहेगा क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने विधेयक संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और

0: देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिस कर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the neat paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion.
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में.
3: द गवर्नमेंट वांट्स अ डिस्कशन इन पार्लियामेंट व्हाइल द ऑपोजिशन इज रनिंग अवे फ्रॉम इट. दिस इज डिफिकल्ट टू इमेजिन बिकॉज इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इट इज यूजुअली द ऑपोजिशन दैट डिमांड्स अ डिस्कशन एंड द गवर्नमेंट दैट रिस्पॉन्ड्स. बट हियर द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज सेइंग दैट इट इज रेडी फॉर

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 1:11:27। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिल तड़प कर तुझे बुलाता है हर एक सांस के साथ। दिल तड़प कर तुझे बुलाता है हर एक सांस के साथ कि अब तो आ जाओ कि कटती नहीं ये रातें तेरे बिन।

जब से आए हो तुम सिमट कर मेरे पहलू में, जब से आए हो तुम सिमट कर मेरे पहलू में, लगता है जैसे पूरी कायनात आ गई हो मेरी बाहों में।

तुम्हें क्या पता कि दूरियों से मोहब्बत का रंग फीका पड़ जाता है, तुम्हें क्या पता कि दूरियों से मोहब्बत का रंग फीका पड़ जाता है। इसलिए यूं ख्वाबों में नहीं, तुम हकीकत में मिला करो हमसे।

देख लो तड़पा कर भी हमको, देख लो तड़पा कर भी हमको अगर सुकून मिलता है, तुम्हारी खुशी की खातिर हम वो दर्द भी सह लेंगे।

चांदनी बिखेरी है अपनी चांदनी सिर्फ तुम्हारे लिए, चांदनी बिखेरी है अपनी चांदनी सिर्फ तुम्हारे लिए, कि आप ही जाओ यह हसीन रात मुकम्मल हो जाए हमारे लिए।

जुबान खामोश है पर आंखों में तेरा ही इंतजार है। जुबान खामोश है मगर आंखों में तेरा ही इंतजार है। सुन सको तो सुनो, ये दिल सिर्फ तुम्हें ही पुकारता है।

कदम तुम्हारे साथ चले तो हर राह मुस्कुराती है, कदम तुम्हारे साथ चले तो हर राह मुस्कुराती है, और ये जिंदगी तुम्हारे संग एक खूबसूरत गजल बन जाती है।

0: ये खामोश रात, बहती नदी और तुम्हारा हसीन साथ। ये खामोश रात, बहती नदी और तुम्हारा ये हसीन साथ। दिल तो चाहता है कि यहीं ठहर जाए ये जिंदगी और ये रात।
1: ये रातें

0: दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था और ये सफर यहीं खत्म होता है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गीरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रेलवे ने

0: पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 660 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण के अंतर्गत रेलवे के शेष खंडों पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 18 आतंकियों समेत 21 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के अनुसार सुराब जिले में आतंकी विस्फोटकों से लदी गाड़ी तैयार कर रहे थे, इसी दौरान विस्फोटक समय से पहले फट गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों और बलूचिस्तान पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया। कांगो में इबोला का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम गेब्रियासिस ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये प्रकोप अब तक का सबसे घातक इबोला प्रकोप बन सकता है। कांगो में अब तक 4,300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of this bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. The report of the inquiry committee investigating allegations concerning former Allahabad High Court Judge Yashwant Verma was tabled in both the Houses of Parliament. The Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Yashwant Verma had submitted its report to the Lok Sabha Speaker Om Birla in May this year. The committee was constituted by Mr. Birla on the 12th of August last year to probe the allegations levelled against Justice Verma after a sum of burnt cash was found at his official residence in New Delhi. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said, "The government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion."
2: Sarkar discussion chahte hai parliament mein.
3: The government wants a discussion in parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a parliamentary democracy, it is usually the opposition that demands a discussion and the government that responds. But here, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will give answers, while the opposition does not want to hear those answers and is walking.

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 2:11 और 4 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से अंजू करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रहिए इस घंटे मेरे साथ और सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत नगमे। चलो बैठें कहीं इस दुनिया की नजरों से छुपकर, चलो बैठें कहीं दूर इस दुनिया की नजरों से छुपकर, कि इस दिल को जीना है हर एक लम्हा बस तेरे संग ही।

वो बात जो अधूरी रह गई थी दरमियां हमारे, वो बात जो अधूरी रह गई थी दरमियां हमारे, आज भी इस दिल में एक हसीन कसक बनकर उभरती है।

वो प्यार था या नहीं ये तो मुझे आज भी पता नहीं। वो प्यार था या नहीं ये तो मुझे आज भी पता नहीं, पर जो एहसास तुमसे था वो किसी और से कभी हुआ ही नहीं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई, अंजू है आपके साथ।

क्या बताएं कि इस दिल की आरजू क्या है, क्या बताएं कि इस दिल की आरजू क्या है। तेरे साथ जीने के सिवा अब इसकी कोई चाहत भी नहीं।

तेरे इश्क में हम इस कदर खुद को भुला बैठे हैं, तेरे इश्क में हम इस कदर खुद को भुला बैठे हैं कि अब आईना भी देखें तो सिर्फ तेरा ही चेहरा नजर आता है।

नींद तोड़ गई है इन आंखों से जब से तुम दूर गए हो। नींद तोड़ गई है इन आंखों से जब से तुम दूर हुए हो। अब तो बस जागती निगाहों को तुम्हारे आने का इंतजार रहता है।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत था। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। स्टूडियो में भारती आ चुकी हैं और अगला कार्यक्रम लेकर, कार्यक्रम होगा हमराही जो 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मुझे अनुमति दीजिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जल्द मिलूंगी। शुभरात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 660 किलोमीटर रूट पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। चौथे चरण के अंतर्गत रेलवे के शेष खंडों पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी गई है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही के इस प्यारे से गीत के साथ जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने।

कभी कभी एक नजर ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। जहां एहसास सच्चे हों वहां शब्दों से ज्यादा आंखें बोलती हैं।

जिंदगी का हर सफर आसान हो जाता है जब साथ चलने वाला अपना हो। मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वह रास्ता होता है जो किसी अपने के साथ तय हो।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्यार वो एहसास है जो बिना आवाज दिए दिल की दुनिया बदल देता है। एक सच्चा साथ पूरी जिंदगी को मुस्कुराने की वजह दे देता है।

मोहब्बत का जादू किसी तिलिस्म से कम नहीं होता। जिस दिल में प्यार बस जाए, वहाँ हर पल एक नई खुशी जन्म लेती है।

इश्क की सबसे प्यारी शरारत अक्सर आंखों से शुरू होती है। इश्क की सबसे प्यारी शरारत अक्सर आंखों से शुरू होती है। जब नजरें दिल का पैगाम दे दें, जब नजरें दिल का पैगाम दे दें, तो खामोशी भी गजल बन जाती है।

प्यार में दीवानगी तब खूबसूरत लगती है जब उसमें भरोसा और अपनापन शामिल हो। सच्ची मोहब्बत हर धड़कन को एक मीठी धुन में बदल देती है।

और समय कह रहे हैं कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 4:10 पर फिर से हाजिर होंगे लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए छोड़कर जा रही हूँ एक प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेवल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha had passed the legislation on Tuesday. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion.
2: The government wants a discussion in parliament while the opposition is running away from it. This is difficult to imagine because in a parliamentary democracy, it is usually the opposition that demands a discussion and the government that responds. But here, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will give answers while the opposition does not want to hear those answers and is walking away. We have repeatedly said that we want a discussion, but they are not agreeing to it.
1: University Grants Commission, UGC, has issued 16 letters of intent, LOIs, to foreign higher educational institutions from Australia, Italy, UK and the US. Minister of State for Education, Dr. Sukanta Majumdar, said this in a written reply in the Rajya Sabha. He informed that UGC has issued LOIs to 6 foreign higher educational institutions in Karnataka, 6 in Maharashtra, 3 in Delhi NCR and 1 in Tamil Nadu. Indian Railways has approved 153 crore rupees construction project of a 4-lane road over bridge at Giratpur Ahmedabad section of Western Railway. The ministry said the railway bridge portion will have a total length of 106 meters. It will comprise 2 composite girders of 53 meters each. Indian Railways has also approved the provision of Kavach version 4.0 on 660 route kilometer of the Izzat Nagar division of North Eastern Railway at an estimated cost of 295 crore rupees. As part of the Har Ghar Tiranga campaign, in Jammu and Kashmir, the Riyasi District Administration organized a Tiranga boat rally in the river Chenab as part of the celebrations marking 150 years of Vande Mataram, with the aim of fostering patriotic spirit among the people ahead of the Independence Day celebrations. In Maharashtra, the campaign is gaining momentum ahead of Independence Day, with patriotic rallies, cultural programs and a range of other activities being organized across the state. The India Meteorological Department has predicted the formation of a low-pressure area over the North Bay of Bengal in the next 12 hours, leading to extremely heavy rainfall expected in Odisha and Gangetic West Bengal today. The Weather Department said that heavy rainfall conditions are also likely to prevail over Karnataka, East Uttar Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Karaikal, Puducherry. The Indian fencing team collected 3 gold, 1 silver and 1 bronze medal

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये समय है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म आखिरी खत के गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर ने, संगीतकार खयाम, गीतकार कैफी आजमी।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नया दौर से आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीतकार ओपी नायर, गीतकार साहिर लुधियानवी।

थोड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा और इस प्रोग्राम में को आगे बढ़ाते हैं सुनते हैं अगला गीत फिल्म शर्मिली से लता मंगेशकर की आवाज में।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म आंचल से, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, संगीतकार सी रामचंद्रा।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाएगा। जी हाँ, 5:10 पर फिर से मुलाकात होगी प्रोग्राम भूर सुहानी में। तब तक ले रही हूँ आपसे विदा और छोड़ कर जा रही हूँ प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म हम साथ साथ से, फिल्म हम साथ साथ हैं। कविता कृष्णमूर्ति, अलका यांग्नी, अनुराधा पोटवाल, कुमार सानू, उदित नारायण और हरिहरन की आवाज में, गीतकार आर किरण, संगीतकार राम लक्ष्मण। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मैं लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

आज स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल है। इस कारण से दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किला के आसपास आज 10 बजे तक यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषादराज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र में इस अवसर पर देशभक्ति रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर माथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण अब राज्य में लागू नहीं रहेगा। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पूर्व प्रणाली के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गई है। ऐसे प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को अब सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास के लिए किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि केरल विधानसभा 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरलम करने का अनुरोध किया था। मलयालम में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान में इसे केरल लिखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद भवन परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा रोड ओवर अंडरब्रिज, फुट ओवरब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। उधर नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

हर सुबह हमें याद दिलाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नई सुबह अपने साथ नई ऊर्जा, नए अवसर लेकर आती है। बस हमें खुले मन से उनका स्वागत करना है।

नया सवेरा केवल सूरज के निकलने का नाम नहीं बल्कि नई सोच नए संकल्प और नई शुरुआत का नाम है। कल की गलतियों से सीखिए, आज को बेहतर बनाइए और आने वाले कल को उज्जवल बनाने की कोशिश कीजिए।